बड़ नाले ये तीखेरा दुख पर बिदे न पड़ नाले मोमा स्वर्गे मोनु भयो म 5 वर्ष को हुदा बालखमा पढ़ना पाइन 7.5 ले छुदा।

찬 प्रभु धन्यवाद। जिंदगी मन को ती काम को बंदगी एक दुई तीन चार पाँच कक्का